इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही, इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही, मेरी वहशत तेरी शोहरत ही सही। हम भी दुश्मन तो नहीं हैं अपने, गैर को तुझसे मोहब्बत ही सही।

0: खने खने अधर आगे करो बास, चौकी चले खने खने चलू मंद, मनमथ पाठ पहला अनुबंध, हृदय मुकुल हेरी हेरी थोर, खनि अचर दाए खनि हुए भोर।
1: আপনি শুনছেন রেডিও বাংলানেট.কম, প্রবাসী বাঙালির 24/7 অনলাইন বাংলা রেডিও স্টেশন। মন যখন নিরুদ্দেশ।